जसले पाथौ नेपालसम्म चिन्छ सो पी खुद गुन्लागा अष्टमी थोरै डो नेपाल ख आने नादिस जिरुबी पाखे नेपाल भाषा या समाचार सरकार भोटे कोशी खुसी ब्या सिम हमनुयालु मन्ती भदौ 22 गते देन्याङ्क बिचा ह्याके गुको छिगुदु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदीय कार्यालय सिंहदरबारे मेगचङ्गु मन्त्री परिषद बैठक भदौ 22 गते नेपालङ्क सरकारी कार्यालय व विदेशी नेपाली दूतावास व नियोगे राष्ट्रिय ध्वया बच्छी कोचुका बिचा ह्याके गु कोछिना जुगु सरकारी प्रवक्ता नपा शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेल जानकारी बिहा दिल अथेयना भदौ 23 गते वङ्गु दे जुगु आन्दोलन या दक्षिण पङ्गु ली जेएनजी शहीद दिवस या लसता लाका डेन्याङ्क सार्वजनिक विधा बिगु कोछि गु न सरकारी प्रवक्ता मन्त्री पोखरेल जानकारी बिहा दिल थथेयाना सरकार भोटे कोशी खुसी बालिपा माले गु उदारे खटे जुया चौपी सुरक्षा कर्मी व कर्मचारी याता जोखिम भत्ता व बजी खर्च लल ह्यागु उदार या झोले घापा जुपिन्टा ढेवा म्याक वास यायगु व सीमा छेज याता मचे झिगु लाख ढेवा राहत लल ह्यागु को झिगु न जानकारी बिहा दिल अथेना भोटे कोशी खुसी बास जनता या जीवन रक्षा व तत्कालीन आपतकालीन उद्धार हत्या नीति एसियाली विकास बैंक सँग वैगु न्यागु मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान गुहाले स्वीकार यागु खुसी बास लिचो लापी मनु व व्यवसाय यता थत्ते न्योज्या केगु नीति राहत कर व महसुल छुट नपाया सुविधा ल ल्यागु को छिना जोगु जानकारी बिहा दिल रसवाया भोटे कोशी खुसी वोगु विनाशन जागु खुसी बा लापी मध्ये आतक झिन्निस चेम सिया सिमल रुया वोगुदु गुकी रसुवा सचिव पिमा नुवाकोटे सचिव चेङ्यामा धादिङे खुइमा चितवने सोसव निगोमा गोर्खा नेनिमा तनुही स्विचामा नवलपरासी पूर्वी निसव झिन्च्यामा नवलपरासी पश्चिम खे सचिव गुइमा भारतीय लुया ओपी नवल परासी पश्चिमे लल हागु झिङ्या झिन्छ्यामा याना मुक चिनिस चेमसिया सिमलुइ कगुख खापा जुपी मध्ये निमसिया वास्या झोले सिगु दु छमा टिचिङ अस्पताले ओ मेमा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर सिगुख लुया ओपी सिमसियाको मसिका नीति डिएनए नमुना मुङ्केगु निसी मागु प्रक्रिया पुङ्क गुली आतक निसव च्यामा मिसा सोसव स्विङ्यामा मिज सोसव चेसोमा म मसुपी याना मुक गुसव नि खुम सीमा चा कुने लाना व्यवस्थापन या गुदु नापा मसिका मजुपी दोची खुइ गुमा सिमया थल नेपाल प्रहरिया वेबसाइटे अपलोड याना तगुदु रसुवाया भोटेकोसी खुसी वोगु विनाशन जाको खुसी बाया हुने तना चौपिन्ता मालेगु ज्या याना चोङ्गुदु थोए झोले भोटे कोशी खुसी तना चोपी खुमा नेपाली सेना उद्धार याना चोङ्गुदु छ नेपाली सेना लाङटाङ चिलिमी हाइड्रो कम्पनिया टनेले विदेशी नापाजना मालेगु उद्धार पुचसँग ज्या नेजाका चोङ्गुदु थोए झोले त्रिशुली 3A स नेपाली व चिनिया प्राविधिक पुच याना गुई सोमासिया मङ्का पुचसँग त्रिशुली 3B नेपाली सेना या चेगुमा गैर सैनिक सोमह व आयोजना प्रबन्ध निर्देशक नापा या मङ्का पुचसँग मालेगु ज्या नेजाका चोङ्गुदु थोए दथे प्रधान सेनापति अशोक राज सिक्देल मिग हाइड्रो कम्पनिया टनेल नापा मेगु लागा तेगु अवलोकन या थुङ्का स्वापुतैगु निकाय दथे लिचो लाइगु कथा समन्वय व सहकार्य यासे नुक पातुक मालेगु व उदारे पल्यान ह्याकेता ब ब्यादिगुदु सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाया केन्द्रीय सचिवालय या बैठक विपद व्यवस्थापन संगुतह या सरकार या दथि समन्वय क्वातुकगुदु रासोपा केन्द्रीय कार्यालय वनस्थली मिहिग चोङ्गु सचिवालय बैठक भदौ 10 गते रसुवाया भोटे कोशी खुसी वोगु खुसी बालिपा अवस्था उद्धार राहत पुनस्थापन या झोले सोङ्गुतह या सरकार या समन्वय सकल सियागु मङ्का कुतके बबिगुख पार्टी सभापति रवि लामिछाना सभापतित्व चोङ्गु बैठक विपद प्रभावित मनुते त जीवन रक्षा थथे

हात सुरक्षित पुनस्थापना यता थ्याबी मागुली चोपी कागु पार्टिया प्रवक्ता जगदीश खरेल जानकारी बिहादिल भोटे कोशी खुसी बाया हुने क्षतिग्रस्त खुइगु मेगावाट क्षमता माथिल्लो थ्री त्रिशुली थ्री ए जलविद्युत केन्द्रके मालेगु उदार नीति ज्या याकन पुङ्के त कुतयना चङ्गुदु नेपाल विद्युत प्राधिकरण या कथा थोए भदौ दस गते भोटे कोशी खुसी समूहको खुसी बासन स्याङ्गु जलविद्युत केन्द्रके मालेगु उदार ज्या तचोकु ख वेकल टनेलिया मुतुई मुनासङ्गु झिङ्याको फिर्तकया भेते पिकाया नेपाली सेना या नेपाली सेना पुच टनेल दुने दुहावना ज्याना चङ्गुदु परराष्ट्र मन्त्रालय रसवाया भोटे कोशी खुसी सन् लाना सुई पेङ्गु देया न्यास व गुइमा विदेशी मनोतनासँग जानकारी बिगुदु खुसी भाषा लिचो लागु लागासँग थिए सोसमा विदेशी मनु नापा आतक्क झिन्छदो गुस गुई सोमा उदार यानागु परराष्ट्र मन्त्रालय नियमित प्रेस ब्रिफिङ प्रवक्ता लोक बहादुर पौडेल छेत्री मेघ जानकारी ब्यादिगु खस विशेष जलविद्युत आयोजना सुरुङ दुने लाना चोपी मनु तेता माले गुली उद्धार पुच संकेन्द्रित जु गुन वेक्लन नेतना दिगु दु मन्त्रालय प्रवक्ता पौडेल छेत्री आ चिलिमेया सुरुङे नेपाली सेना भारतीय प्राविधिक पुच सन् ज्याना चोङगुन जानकारी ब्यादिगु दु रसुवाया भोटे कोशी खुसिया हुने चिन पाखे फसे जुया चोपी सचिव झिम्पेमा नेपामी मनु त केरुङ समिग तातोपानी नाका जुसे नेपाल लिता हगुदु तातोपानी अध्यागमन कार्यालय प्रमुख पदमराज तिमल सिन्हा कथा चिन पाखे सुरक्षित जुया चोपी नेपामी मनु त्यता चिनिया पक्ष राहदानी नम्बर नापाया धल नापा तातोपानी नाकाया लिपिङ लाग्या हया नेपाली अधिकारी या त लल हागु ख सिन्धुपाल चोक या प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशिधर घिमिरिया कथा नेपाल ठ्याङ्का वोपी सचिव झिम्पेमा मध्ये सचिव झिन्सोमा रसुवा या मनु त जुगु थागु दुसा छमादासा रामे छापियामा जुगु जानकारी ब्यादि छुन दिन ह खुसी बास पृथ्वी राजमार्ग कथन लागेको कृष्ण भिरे सडक सम्पर्क त्वाथे धुङ्कानी बिपी राजमार्ग सवारी ज्वल आपालन ह्यान सङ्गुदु थो राजमार्ग सवारी ज्वल उपगुली जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रे पलाञ्चोक ट्राफिक व्यवस्थापन यायता पालम्पा प्रणाली छ गु दु जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रे पलाञ्चोक मालवाहक सवारी ज्वल चानेसिया इले जक्क न्याकी गुन कोछिगुदु प्रमुख जिल्ला अधिकारी सडक जाम मजुई केता ट्राफिक प्रहरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुली नापायासम्म बन्यसम्म आगो व्यवस्था मिलेयानाको सूचना बिहादिगु दुस वैक्ल धुलीखेलसँग खुर्कोट पाखे वनी गु खुर्कोट धुलीखेल पाखे वैगु मालबाग ज्वल पश्चिम फको ल क्रस मजुईको याना यी व्यवस्थापन यानाको नेथना दिगुदु प्रतिनिधि सभा मिगा बैठके निगु अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता दुत बिगुदु बैठके ऊर्जा चलसो तथा सिंचाई मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ नेपाल भारतदेखि दीर्घकालीन विद्युत व्यापार यायगु नापाया सम्झौता दुत बिया दिगु ख नेपाल सरकार र भारत सरकारदेखि जुगु दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता जानकारी या नीति प्रतिनिधि सभासँग दुत बिगु ख मन्त्री श्रेष्ठ सम्झौता नेपाल भारतदेखि मता या दीर्घकालीन व्यापार या नीति थथ्यौ या कथन लबक्या दैगु प्रबन्ध त्यता प्रोसन या मागुली पला न्याकेता इनाफियाना दिगु ख अध्ययना मिगेया बैठके कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोभिता गौतम रोजगार मन्त्री रामजी यादव प्रतिनिधि रामजी यादव पिसन थथगु नुगो पोङ्का दिगु खस प्रतिनिधि सभा मिगा बैठक या विशेष इले सांसद पिस देशे वगु अकल्पनीय राष्ट्रिय विपत्या हाठ्या सकल पक्ष छपा जुई मागुली बबिया दिगु दुस मेघया हे बैठके राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सांसद मनिष शाह नेपाली कङ्ग्रेस सांसद अर्जुन नरसिंह केसी नेकपा एमाले सांसद डाक्टर पुष्पराज कडेल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी सांसद वर्षमान पुन श्रम संस्कृति पार्टी सांसद अम्बिका देवी संग्रौला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सांसद ज्ञानबहादुर साई पी सन्थ थ गु बिचा पोङ्का दिगु खसा नापा सांसद पी प्रकाश चन्द्र परियार गङ्गा देवी श्रेष्ठ परशुराम तामाङ राधिका रमतेल धर्मराज केसी जगदीश खरेल नापा पिस न थ गु नुग पोङ्का दिगु ख थोया नया बैठके आकाङ्क्षाका व शून्य इले सांसद पिस समसामिक विश्लेषण सरकारी अध्ययन कोषालाई दिगु ख प्रतिनिधि सभा बैठक वैगु भदौ 24 गते बुधबार हिनेसिया छता इले चोनी गु गोसा दु
नेपाली सेना भालाकुबिया चोङ्गु झोले रसुवाय दुगु भोटेकोसी खुसीबा हुने सम्पर्क त्वा धया चौपिन सैनिक छेन्च नापा समबन्य यागु हेल्पडेक्स याकगुदु सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेत खुसीबायासँग तना चौपिन सैनिक छेन्च नापा स्वापुजुया चोङ्गु जानकारी बिहा दिगुदु छ थोए भदौ दस गते भोटेकोसी खुसी वगु खुसीबा खेलाना लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज व थो लाग्या दुपी जलविद्युत आयोजना सुरक्षार्थ खटे जुपी पी यामा सैनिक पी तनाचङ्गुदु प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नापा उज्यालो नेपाल पार्टी नायक कुलमान घिसिङ नाप्लाना दिगुदु प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषद कार्यालय मेघजुगु नाप्ला ज्या खुसीबास लिचोला पिन्ता माल्यता उद्धार राहत नापाया विशेष खलाबला जुगु प्रधानमन्त्री सचिवालय जानकारी बिगुदु उगु नाप्ला ज्यासोले शाह सुरुङे तना चोपी मनु ते त सकुशल उद्धार नीति सरकार जागु हल जोल व जनशक्ति छेलेगु धया दिगु नायक सिंह जानकारी बिहा दिगु दु अथियाना प्रधानमन्त्री शाह नापा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेता वर्षमान पुन व पुन नाप्लाना दिगु खसा उगु नाप्ला ज्या झोले रसुवा खुसीबास उकिया लिपाया मालेगु वास राहत इनेगु नापाया विशेष खलाबला जुगु न प्रधानमन्त्री सचिवालय जानकारी बिगु ख पृथ्वी राजमार्ग कथन लागेको कृष्ण भीर चे या वैकल्पिक ट्र्याक च्याकेता अध्ययन नीति सीमा ढेनेगु झाडी फाँडे याइगु ज्या यहाँका तगुदु नौ विषय मुगलिन सडक आयोजना पश्चिम खण्डे इन्जिनियर सचेन्द्र मिश्रका कथ थौ सुई सोमा सीमा ढेनेगु झाडी फाँडियाना ल च्याकेगु कुत जुया चोङ्गुदु रसुआया भोटेकोसी खुसी थोए भदौ दस गते सुथे सिया इले वगु खुसीबा लिपा थिथी देव अन्तर्राष्ट्रिय लागास ग्वाली वैगु झो न्याना सङ्गुदु प्रधानमन्त्री व मन्त्री परिषद कार्यालय कथा भारत आतक यागु धल खे ने पेङ्गुटन राहत उद्धार जोल लल हागु नापा उधारिया नीति विज्ञ पुच नापा लिचो लागु थासे खटियाना तगुदु चिन सुइगु करोड धेबा व ङेगु टन हल जोल युए चे सङ्गुटन कतार पी गुटन राहा जोलन ल लागु ख अथियाना फ्रान्स लिचो लागु लागा नीति निस छेखाया नीति आपतकालीन राहा जोल व लक्जम्बर लाभिया राहा जोलन ल लागु र मन्त्री परिषद कार्यालय जानकारी बिगु दु वैदिक सनातन धर्मावलम्बी पिसा श्रीकृष्ण जन्माष्टमी नखा थौ दे निङ्क भगवान् श्रीकृष्ण या पूजा आजा याना श्रद्धा भक्ति नक्साहना सङ्गुदु ज्ञान योग कर्मयोग भक्ति योग या प्रणयता भगवान् श्रीकृष्ण या जन्म द्वापर युगे भाद्र कृष्ण अष्टमी या मध्य चाने जुगुली थौ या दिन या त श्रीकृष्ण जन्म अष्टमी चाने सिया त मोहरात्रि धाइ थो दिँ दियन्याङ्क श्रीकृष्ण भगवान् श्रीकृष्ण या पूजा आजा याना भजन कीर्तन यागु नापा विशेष याना मिसा मिज व्रत चोना चक्षे जाग्राम चनिगु चलन दु थोए लसत्या थौ ये सोनिग्या थिथि थासे थिथि सङ्घ संस्था तेस श्रीकृष्ण या झाँकी नापा शोभा यात्रा व रथ यात्रा पिकागु चलन दु थोए नखाया लसता सरकार अन्थौ सार्वजनिक विधा नापा बिगुदु थोए नखाया लसता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल व थिथि नेता पिसा लसहना नापा देछागुदु आद्य सम्पिनिया बुख संयुक्त राष्ट्रसँग झिसिलाको विकास आज एसडिजी या त न्योज्या केता पूर्वाधार पूर्वाधार थिथि लागा साझेदारी यातायात ऊर्जा व्यापार र डिजिटल प्रविधि आपाल क्षेत्रीय सञ्चार लगानी या त इना ब्यागुदु चिन अमेरिका या त इना नापा स्वपुदुगु चिनिया कम्पनी हो मनुत दक्षिण छियोको प्रतिबन्ध तुरन्त चिके त इना ब्यागुदु साथ मौसम या जानकारी कथन थौ दे न्याङ्क हिमाली लगाए छुन थासे पहाडी लगाए एकको थासे मला नापा लाप्सा तोय मध्य टकया वा व चपु कुहा वैगु सम्भावना दु गण्डकी बागमती लुम्बिनी सुदूरपश्चिम प्रदेश यात्राई लगाए छुन थासे व मध्य प्रदेश व कोशी प्रदेश यात्राई लगाए मोह थासे मलानापा लाप्सा तोया मध्य टकया वाविगु सम्भावना दु सा तराई या मोह थासे मलानापा लाप्सा तोया पतिचा तस्कम वाविगु सम्भावना दु अथेना लुम्बिनी प्रदेश या तराई या छुन थासे वाफे वैगु सम्भावना दु सा कोशी बागमती गण्डकी प्रदेश या हिमाली लागा बागमती गण्डकी लुम्बिनी व कर्णाली प्रदेश या पहाडी लागा सुदूर पश्चिम प्रदेश या पहाडी व तराई लागा छगुनी गु थासे तस्कम वाविगु सम्भावना दु थौ निने ये सोनी गया क्वाज निन हेगु निसी निगु डिग्री सल्सियस दति चोनी रेडियो नेपाल नेपाल भाषा समाचार पुवन चिताइले नेपाली भाषा समाचार नेना दिसन सुबह

अहिले सुन्दै हुनुहुन्थ्यो नाटक श्री कृष्ण अवतार, लेखक आचार्य केशव शरण, कलाकारहरू मदन दास श्रेष्ठ, उदय खनाल, उमेश, विष्णु मल्ल, सञ्जय कार्की, सुरवीर पण्डित, रमेश बस्नेत, श्रीप्रसाद थापा, सोविता पराजुली, दीपक राजगिरी, शारदा गुरुङ, दमन रूपा खेती, घनश्याम खतिवडा, मनोज बुढाथोकी, जितु नेपाल, सुशीला अर्याल, आरजे सिंह, भूपेन्द्र पराजुली, नवराज खड्का, एमसी घायल, दीपक आचार्य, भूपू जमदार, ओत बहादुर खड्का, रमेश किरण पौडेल, राजन सिंहखडा, शिव दहाल, गोविन्द भण्डारी, काशीनाथ पौडेल, केशव आचार्य, निर्मला पण्डित, बुद्धि सुनवार, बिन्दु बेलवासे, शोभा खनाल, शिरोमणि दवाडी, राजु सापकोटा, एम गुरुङ, पीके नारायण, गायन सहयोगी उदय खनाल, बुद्धिकृष्ण लामिछाने, देवकी ढकाल, सुशील विश्वकर्मा, मनराज नकर्मी, घनश्याम खतिवडा, मनोज बुढाथोकी, आरजे सिंह, मैना धिताल, निर्मला पण्डित, ध्वनि सम्मिश्रण तथा रेकर्डिस्ट श्रीराम रामाजी, सहयोगी नवराज मानन्दर, निर्देशन सहयोगी मनोज बुढाथोकी, आरजे सिंह, नाटक संयोजन तथा निर्देशन मदन दास श्रेष्ठ।

0: नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
1: विज्ञापन पछि बाँकी समाचार। भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य

0: Di Radio Nepal Hin Ang Sring Lama Sherpane Shirike Ki Sangyur Senronang Gyangshing Tezin Dalen Lakselonpur Dr. Bigram Timlusinaki Bote Kusila Wa Ushotok Tema Kyon Poku Mitui Par Bidio Tang Tho Khepel Gitu Parla Mimang Ongcha Tang Sungkyopla Khakshan Bozi Gola Gyangshing Sokpati Wala Shunang Wae Lonpo Timlusinaki Nuakor Tang Raswa Ki Holding Center La Wotup Anga Keche Wotup Ampum Peza Tang Nasa Galup Mitui Khangbi Mitui Ngoshi Betup Par tang video tyo khepal kitu parla khepal kitu mangula shunangsung dugran kyane delo tup sokpa tang kyan chigdil ma kyane holding center la shuku mangula tang sungkyop tang rahat ki lakala kale longu kyane sangyur tyo dutup mangula shunang wae dugran kyane bote ko si shotok tema kyon poku peza tui ne tang tang ngoshi petu kyane par tang video tyo khepal chungup tang tukoi par tang video tyo sharke kyurgola press council nepal ki shunang wae shung tang press council ki rangjung kale ki tusola tin tin metup tang ai ne zo par tang video tyo khepta ki dup mangola gyangshing sokpa tang samajik sanjal thoku miti wala shung wae Silon Balendra Sahatang, Australia ki Silon Anthony Albanese parla aring telephone tema tungu chungwae. Aring topla chungu tungula Silon Sahaki tandik kalya ki tusola Australia ki Silon tang kyan chungup tungu kakshan po chungup sungup Silon ki press tezin nyamship khepa dipa dahal ki khyantok nangsung. Silon Sahaki raswa ki botekosi sangbu tema wau shotok tema phoku kyon la australia shung tang te ki mitui kyau program la sikor kya nang sung dugran kane australia ki khepa tang kyan drone operator ki sok patang rat ki chalak ti wakal tang gupla thuchi che shu nangin shotok la shur ne ton wo tu australia ki miti wa dung khurta kane sorup la ka sang ki wo tu siron sa ki sung sung नांगसित लोनपो सुदन गुरुंग की त्रिशूली 3A छुलोक आयोजना की सुरुंग ने निमाची थामातिंगला संग मिरंगी सेनबुरंग सुंग्योप चुंगसीमा तरुंग संग मितियो सेनबुरंग नेथोपु रेवा ओतुप सुंगवाए लोनपो गुरुंग की दुकोई काले की तुसोला काले की नेतांगला सुंग्योप की लाकाला हुर्ता क्या ने लाका की ओतुप एमबी मकमी एमबी कोरसुंग मकमी सशस्त्र कोरसुंग मकमी बल तंग सेंट्रल कमांड सेंटर की सोखपाला थुचिचे शुनांगवाए दुग्रांग क्या ने आरिंग टोपला त्रिशूली 3A छुलोक आयोजना की सुरुंग ने ल्याजतपा संजय सहातंग कबीर महर्जन ला सेनबुरंग सुंग्योप क्याउइन दुग्रांग क्याने नासा गुलुप मी मिरा चिकी फुंगबुला संग सुंग्योप क्याउइ शेन वाय नांगसित लोनपो गुरुंग की सुंग्योप सोकपी तरुंग संग सुरुंग नांगला सुंग्योप कितुप लाका की ओतुप सुंग सुंग लोनपो गुरुंग की शोतोक ला शोर ने तोरुप तियो सोलुप तंग सुंग्योप की तोंदोक ला हुर्थक नंगुप सोकमी तियो सागर डकाल तंग श्रीराम नेउपाने ला सिकुर क्या नांग वाय सुरुंग नांगला यांबा मी तियो संग उंगथोपु ने तांगला खाक्षन पोसी सुंग्योप सोकपी सोलुप लाका ला हुर्थक क्याने की ओतुप सुंग सुंग बोटे कोसी सांगबुला वौशोतोकला शोने नासा गलुप्ती थो तंदासक तोंगचिक तंग सैंगी तंग गुपचुगुआ सुमलेपु एमबी कोरसुंग मकमिकी शेनवाए एमबी कोरसुंग मकमिकी शेतुप नंगसिन पेजा मिरा दिनचु थोनगु अंपुम मिरा सैंगी तंग गपचु तंग जोंदा मिरा सैजी तंग निशु गेकी फुंगबुंगेउ शेनवाए तुक्रां क्याने मिमेरा सैंगा तंग सुमचु सोंगी की ti zuki yanlak tiwa trang yeu tang mirangi men khangla men ju ki tupru mala nasa golup korsung magmi ki shetubin korsung magmi ki shetub nang sin tanda sek nasa golup tu nang la tung chik tang sai chik tang shib chu she sum ki dna ki namuna du tang nasa golup mi tu khangbi mi mira sai din tang churgu ki dna ki namuna du shen wa shotok la shor ne tanda sak mbi mi tang shigal ki mi kyane tarung sang tung ji tang sai ge tang gup chu go ge ton wo du mbi korsung magmi ki shetubin torup सोलुप तंग सुंग्योप कितुप लाका तंदा सुंग्योप लेचत पातुई की ओतुप शेन वाय तंदा सेक नासा गलुप तुई नांगला मिरा सही चिक तंग गुपचुगुआ सुम की फुंगु टीचिंग मैन खांगला खुरने वाव शेन वाय मैन खांगला खुरने वाव फुंगु तुई नांगला सही चिक तंग दिचु थोन जिकी फुंगु परिशन क्या सिंदुप तंग मिरा निशु जिकी फुंगु ओशी क्याने खांगबी मितियोला सीगे बु मैन खांग की फॉरेंसिक लैब की सो डॉक्टर गोपाल चौधरी की खेतोक नांगसुंग दुग्रांग क्याने तंदा सेकला मिमिरा तोंग चुक सुम तंग गुपचुगुआ सुमला सुंग्योप क्याउ राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तेजिन ट्रिक प्राधिकरण की सेतुपिन बोटेकोसी शतकी जोसालेन्सी छुलुक आयोजना नासोकी सुरुङ नाङला कालेला स्वरूपतीवाला छोलुप ताङ सुङ्क्योप कितुप लाका हुर्था क्याने गोजुन वाए एमबी कोर्सुङ मकमी एमबी मकमी सशस्त्र कोर्सुङ मकमी ताङ ग्याकार ज्ञानक ताङ कोरियाकी खेपा दुई सोकपी अपर त्रिशुली वान सिलिमिए ताङ रसुवागाडी छुलुक आयोजना कि सुरुङ सकुल्ला कालेला स्वर्ण ओतुप मितियो स्वरूप ताङ सुङ्क्योप कितुप लाका हुर्था क्याने कि ओतुप जोङकी छाक्रोक सिडियो दुर्वप्रसाद अधिकारीकी ख्यान्तोक नाङसुङ ज्ञानकी यम्बुतङ क्यान जल विज्ञान याम्सिप कोर्की लेन फार्सु किदुप सेनवाय सुङ्ग्योप्ताङ राहतकी तोन्दोक्ला ती रोग्रम किदुप यम्बुला उतुप ज्ञानक सुङसाप खाङकी सेनवाय लेनला चाङबुला छुग्याउ ताङ खाकी सो त्यामा थेन्दुप कलेकी कोर्की लेन त्यो जोकु सेनवाय ज्ञानकी नाम कोर्की छोक्पी ज्ञानक ताङ यम्बु पर्की केरुङ ताङ रसुवा सनसम्ला सोतोक ताङ टोक्पा गल्ने जुन रङ यम्बुला नाम याम्सिप मौसम पूर्वानुमान ताङ रङजुङ कले कोर्की सेवा तिवा तिरिनुवाउ सेनवाय बङ्गलादेश सुङ्की एमबी सुङ्की सिलोन दैवी प्रकोप सुङ्क्योप कोसला ट्याङ्गा बुम चिथाम्बा अमेरिकी डलर रोक्रम क्यान वाय बङ्गलादेशकी छिगेल लोनपो सुर्पा हुमायुन कबीरकी बङ्गलादेशकी तन्दोकलाई एमबी सुङसप घनश्याम भण्डारीला बङ्गलादेशकी सिलोन तारिक रहमानकी एमबी सिलोन बालेन्द्र शाहला कल्तङ नङ्गु पत्र चिगेकिन तिकोडला ख्यान्तोक नङ्गुबिन तुग्राङ क्याने नोर लोनपो डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेकी अमेरिकाकी एआई छोक्पा गोजुतुप जेन्सेन होङकी सिलोन दैवी प्रकोप सुङ्क्योप कोसला अमेरिकी मिलियन चिथाम्बारोक्रम क्याउ ख्यान्तोक नाङसुङ सोतोकी जोसालेन्सी पृथ्वी ग्यालामकी कृष्ण बिरला लाम नागल्सीमा बिपी ग्यालाम थोकु गाडी तुई थो फर्नुवाए ग्यालामला गाडी तुई थो फर्सीमा जोङकी प्रशासन ल्याकुङ काभ्रे पलान्सोकी ट्राफिक टडिक कितुबला गाडी त्यो तोङ्गु आलो पालो प्रणाली लगलेन क्यानुवाए जोङकी प्रशासन ल्याकुङ काभ्रे पलान्सोकी चालक रूप गाडी त्यो गमी तुसोला त्रङ जिन्क्यङ कितुप थाक्चोत क्यानुवाए जोङखाला हुतुप सुङ्क्योप सोक्पी सोक्दुकी चालक रूप गाडी त्यो गमी तुसोला त्रङ जिन्क्यङ कितुप टडिक्याउ ख्यान्तोक नाङवाए हारिङ श्रीकृष्ण अष्टमी तुसेन ग्यालखाप नाङला ल श्रीकृष्ण कि छक सपकी सिंहवाए ल श्रीकृष्ण क्यौ निमी ठेन्सोकी हारिङ ल श्रीकृष्ण कि छक सप क्याने न्याना देने दी तुसेन स्याप लुक्सो होतुप सेनवाए तुग्राङ क्याने सुन्दरपश्चिम कि कञ्चनपुरला साङ गौरा तुसेन सिंह होतुप सेनवाए रेडियो नेपालले हारिङ कि सेरिके कि साङ्गिरु डुप्सुङ थुसिछे
1: नेपाल टेलिकमको 4G

लासो फ्याफुल्ला तिनी मन्जुश्रीसम्म त 2862 तालो यान्देलाला छेपाङी चुइसेसोम विक्रमसम्म 2083 साल भदौलाला छेपा चुइसेकु सुङ्ग्रे शुक्रबार छु रेडियो नेपाल हिन्ना तामाङ साङ्गुरी राङ्दा डेनमुला ना सूर्य मोक्तान सूचना थिन संसार ब्लोन डाक्टर विक्रम तिमसिनासे भोटेकोसी गान्धी रेखामा भाल प्रभावित हुलबाला दुङ्गाल थिन संवेदनशील अवस्था त सङ्घर्षमा मिलोई मर्यादा गोपनीयता थिन सुरक्षालाई सम्मान नभरी सञ्चार माध्यम व्यक्तिगत विवरण फोटो थिएन भिडियो सार्वजनिक लामा विशेष संवेदनशीलता बारे मोइजेनला शुभहिन्ना ब्लोन डाक्टर तिमल सिन्हासे विपत्ला वास्तविकता सार्वजनिक गादोबा संचार माध्यमला महत्वपूर्ण दायित्वहीन बासाइनन विपद से प्रभावित मिला गोपनीयता सुरक्षा आत्मसम्मान थिएन मानसिक संवेदनशीलतालाई सम्मान लबरी पत्रकारिता थुम अझ महत्त्वपूर्ण जिम्मेवार तत बसे सम्बन्धित निकाय थिएन ताम आलना होल्डिङ सेन्टर रि आवाङ मारिनन् साङ्गिर बुनगतिदा ब्लोन तिमल सिन्हासे मोइसेनला शुभमला बङ्गलादेश सरकारसे नेपाल सरकारलाई काइब्लोन दैवी प्रकोप उद्धार कोषले लाख चुई अमेरिकी डलर टाङ्गा रोला बुम्बला नेपाल डे ग्रेन भाल खाबा थेन ढुई खाबा लिचा राहत बोलाबारी पुनर्स्थापना लाबारी थेन मिलोइदा तोबा रोलाबारी बङ्गलादेश तिन लाख चुई अमेरिकी डलर टाङ्गा रोला बहिन्ना बङ्गलादेशलाई रोङसा छ्याब्लोन हुमायुन कबीरसे नेपाली ग्रेबोन घनश्याम भण्डारी दा थेर्ला काइब्लोन तारिक रहमान से नेपाललाई काइब्लोन बालेन्द्र सहाला मिन्द्री गोर्खी पत्र धुन्सी टाङ्गा रोला बाला जानकारी धुन्सी बहिन्ना चुरानुलासी नोर्बन डाक्टर स्वर्णिम वागले से अमेरिकी याई कम्पनीलाई संस्थापक ग्रेन कार्यकारी अधिकृत थिन्चोहो जेन्सेन ह्वाङसे काइब्लोन दैवी प्रकोप दार कोसरे लाख चुई अमेरिकी डलर टाङ्गा रोला बुम्बला विषय सुङ्क्ष बुम्बला नोर्बन डाक्टर वागले से नेपाल सरकारलाई तर्फ ग्याम ह्वाङदा थुजेछे धुन्छुवान थे टाङ्गासे रसुवा जुङ भोटेकोसी गान्धी रेखामा भाल प्रभावितता राहत बोलाबारी थिएन उद्धार लबारी ग्रेन रो तसेलमला विषय संक्षेपमला काइब्लोन बालेन्द्र शाह थिएन अस्ट्रेलियाला काइब्लोन एन्थोनी अल्बानिज तिनी टेलिफोन रूप लेङमुला शुभमला टेलिफोन डे काइब्लोन शाहसे नेपालसे दान्दे लामन ग्रेन दुङ्गाल ना सिटीमा दुईरी अस्ट्रेलियाला काइब्लोन थेन्चु लेङमुला विभा लामन महत्त्वपूर्ण ताम हिन्न विषय सुङसुभ ताम काइब्लोनला कागुर थुतबोन थिएन अनुसन्धान खेन्पो दिपा दाहालसे सुङ्गहिन्ना काइब्लोन शाहसे चुरुन भदौलाला चुइकुनु र सुवा जुङला भोटेकोसी गान्धी रेखाबा ग्रेन भालसे मिलोइ थिएन भौतिक पूर्वाधार द क्षति तानलाबा ताम्रे अस्ट्रेलिया सरकार थिएन थेर्ला हिल्बासै लाबा रुहला फेरि थुजेछे धन्छु बमला काइब्लोन शाहसे अस्ट्रेलियासे खेन्पो गादेल छ्याम्रे ड्रोन अपरेटर ला टोली ला छ्याम्रे राहत पुगेबा थिएन ट्राङ्गा रुहलासे पिनबारिनन् थुजेछे धन्छु बमला दिम्लोन सुदन गुरुङसे त्रिशुली ए 3A जलविद्युत आयोजनाला सुरुङ नङ्ग्याम चुइरे लिचा मेन्दोङ हिम हि छोनमन उद्धार लबारी खाम्बासे अझै आशा शिवा आर्य विशेष संक्षेपमला दिम्लोन गुरुङसे लामन चुनौती मुसाइनन उद्धार लबान खाबा नेपाली सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल थिएन सेन्ट्रल कमान्ड सेन्टरलाई टोरिँदा थुजेछे धनशुभमला तिनीश्वरी त्रिशुली 3A जलविद्युत आयोजनाला सुरुङ नाङ्ग्री ढुङमा कर्मचारी कदे सञ्जय शाह थिएन कवीर महर्जन्दा छोनमन उद्धार लाबा दिम्लोन गुरुङसे सुरुङ ग्याम साहाथेन महर्जन्दा छोनमन उद्धार लाबा टोलिदा हौसला पिनबारी तिनी छोरी आयोजना सिंहबग्लारी दोबोबा दिम्लोन गुरुङसे भाले प्रत सिम्भाबा कदे दाम हाइबारी थिएन उद्धार लाबारी बाङ्लाबान खाबा सांसद गदे सागर ढकाल थिएन श्रीराम नेउपानेला डेन्चला छिपमला सुरुङ नाङ रिस्यान मेघदे छोनमन मुबारी खाम्बा अनुमान लाबान भाबा मिता धान्देनुन उद्धार टोलीसे माइबनमला भोटेकोसी गान्धीरी खाबा ग्रेन भाल्डी परप्तासी रसुवा जोङरी मुबा लोलो लोलो जलविद्युत आयोजनाला सुरुङ नाङ्ग्री माबा मिदा दान्देनुन माइबा थिएन उद्धार लाबा घे लाबनमला नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी बल थिएन नेपाली प्रहरीलाई छ्याम्रे चीन भारत थिएन कोरियालाई खेनपो टोलीसे तोच्चा त्रिशुली गिक चिलिमे थिएन रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाला सुरुङ थुम्री माबादाम माइबा थिएन उद्धार लाबा घे लाबनमला विषय रो ग्रेन जोङ अधिकारी ध्रुव प्रसाद अधिकारी से सुङ्गा हिन्ना थेरी भाल्डी परप्तासी शिव
ला क्यार्जगेक्से मेन्द ब्लिचुइला सिबलोइरो रुप्सी जिन बमला भाल खबलिचा रसुवा जोंग्याम तोङी ग्याजाङासे मेन्दो डुचुइ ब्लिमी मासिटी बमला नेपाली सेनाला श्रीनाथ गणग्याम मेन्दो घिचुइ सेङेस नेपाल प्रहरीला मेन्दो घिचुइ से भे सशस्त्र प्रहरी बल्ला मेन्दो चुइ से सोम सरकारी कर्मचारी मेन्दो घिचुइ से कु बैङ्क थेन वित्तीय गेन्दुनला मेन्दो घिचुइ से ढु रसुवाला तोङ्गिक ग्यार्जङिसे मेन्दो घिचुइ ढु स्यानजोङला ग्यार्ज ब्रेसे मेन्दो ब्रेचुइ घि थेन पर्यटक ग्यार्जङिसे मेन्दो ब्लिचुइ सोम मासिटी बमला भोटेकोसी गन्धेरी खबा ग्रेन भाल्डे परप्तासी शिव मि चुसाङ्गेर शोभा दुई दोनामा तोङ्गिक ग्यार्जङिसे मेन्दो कुची सोमछो बमला विषय नेपाल प्रहरी सेपाङ बमला नेपाल प्रहरी अनुसार दान्दी दोनामा मेन्दो सोमचुइसे ब्लिज आजकोला मेन्दो ब्लिचुइसे घाँ जामेकोला ग्यार्जङिसे मेन्दो घाँचुइ जामेकोला थिएन ग्यार्ज ब्लिसे मेन्दो घिचुइसे घिस रेम्फे बेला शिवलोइरो स्याप्पा बमला चुनाउनुलासि ग्यार्जङासे मेन्दो सोमचुइसे घि मिला लोलो लोलो अङ्ग स्याप्पा थिएन मेन्दो घिला अस्पतालले मान्ला बताङ्ग्री शिव बमला बिसिनन् प्रहरी सेपाङ बमला प्रहरीला अनुसार दान्दी दोनामा तोङ्गिक ग्यार्जगिक्से मेन्दो ब्लिचुइ सोमि थेन ग्यार्जा निस मेन्दो चुइसेकु ङामला मिला डिएनए नमुना रुप्सिजिन बमला भाले प्राप्तसी ह्युलडाङ्गा थेन ह्युल फिर्काप्ला लासे दान्दे नुन तोङ्ग्ली ग्यार्ज ब्रेसे मेन्दो कुचुइ भे मि भापा बोला बिसे प्रहरी सेपाङ बमला चुनुन ताङ्ग्री नेपाली सेनालाई उद्धार टोलीसे भाल प्रभावित त्रिशुली थ्री ए जलविद्युत आयोजना सुरुङ नाङ्याम मेन्दो घिक्ला शिवल हिरो ते बमला रसुवा जोङला भोटेकोसी गान्धेरी खापा भाल्डे परप्ता सिसिबाकादेरी ग्यार्जगिक्से मेन्दो कुची सोमला शिवलोइरो त्रिभुवन अस्पताल महाराजगञ्ज याम्बरी बापुमला अस्पताल फरेन्सिक ल्याबला ग्रेन डाक्टर गोपाल चौधरी से अस्पतालली बाबाकादेरी ग्यार्जगिक्से मेन्दो निश्चय ब्लि शिवलोइरो परीक्षण लासे जिनबामुला विषय सुङबामुला अस्पतालली बाबा शिवलोइरो कादेरी मेन्दो सोम निचुइ से ब्लिदा मुसे बाली छ थेना दिम्थे मेदा पिन्से जिनबामुला विषय नन् अस्पताल से पाङबामुला चुरानु लासी राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरण से रसुवा जोङला भोटेकोसी रेखाबा ग्रेन भाल प्रभावित तोङचुइ से सोम हिलवाला उद्धार ला बमला विषय पाङ बमला प्राधिकरणला अनुसार तिनी दोनामा तोङचुइ से सोम मेन्दो कुचुइ से सोमला उद्धार ला बमला चिनसे नेपाल दा जलविज्ञान अनुगमन सम्बन्धीलाई सूचना पिन्छेला थापा बमला उद्धार थेन विपद दुरी राहत पिनबारी बाङतागै विषय सूचना पिन्छी रोलासेला मला विषय चिनिया ग्लेबोन खाङसे पाङबा हिन्ना चिनसे गान्धेरी खापा भाल थेन जोमथुम रिमुबा गोइकादेरी इमराङमा जोखिम सम्बन्धीलाई सूचना नुन पिन्छी चिन पिन्छेला थापा बमला चिनला मौसम सम्बन्धी निकायसे चिन थेन नेपाललाई गुङरिमुबा केरुङ रसुवा मुर्थुम्री ग्रेन ढुइ खाबाला ताम हेन्से नेपाल दा मौसम अनुगमन मौसम पूर्वानुमान नाचला चेतावनी थिएन प्रभाव सम्बन्धीलाई सेवा गर्दै पिनबान खाप मला विषय पाङ बमला विपद खापला पाइएनन् चिनिया प्रशासन छ नेपाल र मौसम विभाग द भिडियो ग्याम मौसम सम्बन्धीलाई जानकारी पिनबान खाप मला विषय नन् पाङ बमला ओसम भोटेकोसी गान्धेरी तिलैरे नाच खाबा ग्रेन भाल से पृथ्वी राजमार्गलाई कृष्ण भा भ्रारी सडक ग्याम नोङमली छ बिपी राजमार्गरी सवारी साधन गर्दै लेबरी वाङ बमला राजमार्गरी सवारी साधन लेबरी वाङ बलि छ जुन प्रशासन गिदिम काभ्रे पलाञ्चोक से ट्राफिक व्यवस्थापनलाई पनि आलो पालो लाबठिम लागुला बमला जुन प्रशासन गिदिम काभ्रे पलाञ्चोक से सामान पूर्व सवारी साधन मुना चेकन छेकबारी पिनमानुन निर्णय ला बमला चरण साङ्गुर गेदेला छ्याम्री तिनी त तामाङ साङ्गुर जिन्जी रेडियो नेपाल ज्ञानमा लस्युगो लसो फ्याफुल्ला

यी सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवास थिक विजय झासा सुनल जा मैथिली भाषामा समाचार। वैदिक सनातन धर्मावलम्बी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व आई देशभर भगवान श्रीकृष्ण के पूजा आराधना का श्रद्धा भक्तिपूर्वक मनाब रहा छथि। ज्ञान योग्य कर्मयोग भक्ति योग के प्रणेता भगवान श्रीकृष्ण के जन्म द्वापर युग में भाद्र कृष्णाष्टमी के मध्य राति में भेला सा आजुक दिन के श्रीकृष्ण जन्माष्टमी या राति के मोहरात्रि कहल जाते। अय दिन देशभर के कृष्ण मंदिर में भगवान श्रीकृष्ण के पूजा आराधना प्रवचन भजन कीर्तन के संगे विशेष का महिला पुरुष व्रत रहकर राति भर जगी छथि। अन्याय अत्याचार राक्षसी प्रवृत्ति से संपूर्ण मानव के रक्षा करबाक लेल भगवान विष्णु के आठम अवतार के रूप में जन्म लेने श्रीकृष्ण आजीवन सत्य के पक्ष में रहकर सत्कर्म के लिए मानव समुदाय की प्रेरित कहने चले थे। आइए श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सरकार सार्वजनिक छुट्टी सेहो देने। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल भगवान श्रीकृष्ण के संदेश आयु ओतबा सान्दर्भिक का उपयोगी रहल बतौलनि। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व के अवसर पर आज शुभकामना संदेश दैत ओ सुख शांति आ सुस्वास्थ्य के कामना कयलनि। विश्वभर सनातन धर्म आ संस्कृति के संरक्षण तथा विकास में योगदान करवला मानव जीवन के लिए मूल्यवान धर्म कर्म प्रेम नीति आ ज्ञान के संदेश प्रवाह करवला भगवान श्रीकृष्ण के पूजा आराधना का ई पर्व मनायल जात। राष्ट्रपति पौडेल बतौलन स्वार्थ रहित कर्म सत्य न्याय आ धर्म में अडिग रहबाक शुद्ध मन आ त्यागपूर्ण व्यवहार करवला तथा कर्तव्य प्रति सब दिन प्रतिबद्ध रहवला श्रीकृष्ण के संदेश आइयो ओतबा दशांदर्भिक आ उपयोगी रहल। राष्ट्रपति पौडेल बतौलन और श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर आपसी सद्भाव करुणा कर्म योग आ मैत्रीभाव बढ़ावित सभ्य आ सुसंस्कृत समाज निर्माण के लिए प्रेरणा प्रदान करे कह का कामना सेहो कयलनि। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बानिज बीच आज टेलीफोन संवाद भेल। आज भिनसर भेल टेलीफोन संवाद में प्रधानमंत्री शाह नेपाल कठिन परिस्थिति से गुजर रहल समय ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री संग संवाद हो महत्वपूर्ण रहल बतौने प्रधानमंत्री के कार्यालय जनौलक। एकर में प्रधानमंत्री शाह भादो 10 गते रसुआ के भोटिकोसी नदी में भीषण बाढ़ आयला से जनधन आ भौतिक पूर्वाधार में पहुंचल क्षति प्रति ऑस्ट्रेलिया सरकार आ ओतुका नागरिक देखौने ऐक्यबद्धता प्रति कृतज्ञता व्यक्त कलन। संगे ओ नेपाल के आई विपद के समय में उद्धार तथा राहत कार्य में ऑस्ट्रेलिया के नी सहयोग के प्रशंसा कलन। खासकर ऑस्ट्रेलिया सरकार विशेषज्ञ सहित ड्रोन ऑपरेटर के टोली सहित अत्यावश्यक राहत सामग्री पठबत आर्थिक सहयोग कने प्रति प्रधानमंत्री शाह आभार व्यक्त कलन। प्रधानमंत्री शाह नेपाल में बाढ़क कारण बेपत्ता भेल ऑस्ट्रेलियाली नागरिक के खोजी कार्य में सरकार उच्च इच्छा देखौने चर्च करत खोजी कार्य तीव्र भ रहल प्रश्न कलन। नेपाल ऑस्ट्रेलिया बीच लंबा समय से घनिष्ठ संबंध रहल चर्च करत विपद के क्षण में खोज उद्धार राहत तथा पुनर्स्थापना के कार्य में ऑस्ट्रेलिया सरकार संग निरंतर समन्वय आ सहकार्य जारी रखबाक प्रतिबद्धता जनौलन। संवादक क्रम में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी विपद के कारण नेपाल भोग रहल कठिनाई के संबंध में चिंता प्रकट कलन। वो ऑस्ट्रेलिया सरकार के दिस से संवेदना व्यक्त कने नेपाल स्थित ऑस्ट्रेलिया के दूतावास जनौलक। बाढ़ से भेल जनधन के क्षति अत्यंत मर्माहत जेहन रहल चर्च करत अखनो संपर्क विहीन रहल ऑस्ट्रेलियाई नागरिक सब के खोजी करबाक लेल हर संभव सहयोग करबाक हुनकर कहब छलन। गृहमंत्री सुदन गुरुंग त्रिशूली 3A जल विद्युत आयोजना के सुरुंग से 10 दिन पश्चात दू गोटे के जीवित उद्धार भेल संगे अखनो आशा के किरण जीवित रहल बतौलन। सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत ओ निरंतर के कठिन चुनौती के बावजूद उद्धार में खटल गेल नेपाली सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी आ सेंट्रल कमांड सेंटर के टोली प्रति धन्यवाद व्यक्त कलन। आई भिनसरे त्रिशूली 3A जल विद्युत आयोजना के सुरंग में फसल कर्मचारी संजय शाह कबीर महर्जन के उद्धार कैल गेल छल। वो उद्धार टोली अखनो सब सुरंग में निरंतर खट रहल जानकारी दिलन। गृहमंत्री गुरुंग सुरंग से शाह महर्जन के सकुशल उद्धारक समय हुनका सबके दुनू गोटे आ उद्धार टोली के हौसला प्रदान करबाक लेल वह ठाम में पहुंचल छले। गृहमंत्री गुरुंग बाढ़ में पड़ संपर्क विहीन की खोजी तथा उद्धार के लिए निरंतर प्रयास हेबाक सांसद सागर ढकाल आ श्री राम ने पाने के काज के उच्च कदर कैल गेल बतौलन।
सूचना तथा संचार मंत्री डाक्टर विक्रम तिमिलसिना रसुआ बाढ़ में घायल भ अस्पताल में उपचारत रहल रोगी से भेटल छथि। मंत्री तिमिलसिना आई महाराजगंज स्थित शिक्षण अस्पताल में पहुँच के बाढ़ से घायल भ उपचार करा रहल रोगी के स्वास्थ्य अवस्था के संदर्भ में जानकारी ले लेने छ। घायल के उपचार में भ रहल प्रगति, अस्पताल से प्रदान भ रहल इलाज सेवा तथा घायल के आवश्यक स्वास्थ्य सेवा विषय में अस्पताल के चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मी संग मंत्री डॉक्टर तिमिलसिन्हा जानकारी ले लें। रसुआ के भोटे कोसी में आयल विनाशकारी बाढ़ के कारण आई दोपहर धर 1293 गोटा के शव भेटल। केंद्रीय प्रहरी प्रवक्ता अवि नारायण काफले के हिसाबे रसुआ में 140, नुआकोट में 186, धादिंग में 85, चितवन में 359, गोरखा में 72, तनहू में 38, नवलपरासी पूर्व में 221 और नवलपरासी पश्चिम में 194 आ भारत में भेटल गेल नवलपरासी पश्चिम में बुझाएल गेल 18 सबका का 1293 शव भेटल। घायल भेल मध्य दू गोटा के उपचारक क्रम में मृत्यु भेल, जाय मध्य एक गोटे के टीचिंग अस्पताल एक गोटे के राष्ट्रीय ट्रामा सेंटर में मृत्यु भेल। भेटल सबके पहचानक लेल डीएनए नमूना संकलन से लकर आवश्यक प्रक्रिया पूरा का अखन धरि 222 महिला, 355 पुरुष आ 453 नै खुलल कक जमा 1030 सब व्यवस्थापन कैल गेल। सब पहचानक लेल मृतक के 1260 आ परिवारजन के 846 के 2106 डीएनए नमूना संकलन कैल गेल। संगे पहचान नहीं भेल 1263 सबके विवरण नेपाल प्रहरी के वेबसाइट में सेहो राखल गेल। प्रहरी प्रवक्ता काफले अय के जानकारी देलन। रसुआ के भोटे कोची में बीतल बुध दिन आयल बाढ़ तथा भूस्खलन पश्चात बेपत्ता भेल मध्य प्रदेश के 30 गोटे संपर्क में आयल। मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर धाम के हिसाबे बृहस्पति दिन धरि 30 गोटे संपर्क में आयल तो 168 गोटे संपर्क विहीन। मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक प्रभु प्रसाद ढकाल के हिसाबे परसा में 2 गोटे संपर्क में आयल छथि, बारा में 2, रौथट में 6, सरलाही में 3, महतरी में 7, धौनसा में 7 गोटे संपर्क में आयल छथि, तसीरहा में 2 आ सप्तरी में 1 गोटे संपर्क में आयल छथि। रसुआ के बाढ़ से प्रभावित नागरिक के उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना के लिए बारा के महागढ़ीमाई नगर पालिका 41,51,000 टका सहयोग करत। नगर कार्यपालिका के निर्णय हिसाबे जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी से प्राप्त हो वाला योगदान आ नगर पालिका के विपद व्यवस्थापन कोष से रकम जमा कर प्रधानमंत्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष में जमा कैल जाय। प्राकृतिक विपद के कारण प्रभावित नागरिक के उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना में सहयोग पहुँचे के बाद उद्देश्य के संग नगर पालिका आर्थिक सहयोग करबाक निर्णय केने नगर प्रमुख उपेन्द्र प्रसाद यादव बतौलन। ओ विपद के कठिन परिस्थिति में प्रभावित नागरिक के सहयोग करब सबसे बड़का मानवीय दायित्व भेल बतबैत सहयोग के लिए योगदान कर वाला नगर पालिका के जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी प्रति आभार व्यक्त कलन। नगर प्रमुख यादव प्राकृतिक विपदा के समय पीड़ित नागरिक के तत्काल राहत तथा सहयोग उपलब्ध कराव स्थानीय सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाज बीच सहकार्य आवश्यक रहल बतौलन। चीन नेपाल संग आपातकालीन जल विज्ञान अनुगमन संबंधी सूचना निरंतर आदान प्रदान करबाक जनौलक। उद्धार तथा विपद राहत प्रयास के लेल इस सहयोग करवला एत स्थित चीनिया दूतावास जनौलक। अमेर नदी में बनल अवरोध तथा हिमताल से उत्पन्न जोखिम संबंधी सूचना सेहो समेटल जात। चीन के मौसम संबंधी निकाय चीन आ नेपाल बीच के केरुंग रसुआ सीमा नाका में भीषण भूस्खलन अलाक बाद नेपाल के मौसम अनुगमन, मौसम पूर्वानुमान, पूर्व चेतावनी तथा प्रवाह संबंधी सेवा सब उपलब्ध करबैत आयल जनौलक। विपद लगले चीनिया प्रशासन नेपाल के मौसम विभाग संग वीडियो मार्फत मौसम संबंधी परामर्श कैने आ नेपाल के उद्धार तथा राहत कार्य के लिए मौसम संबंधी सहयोग सक्रिय रूप में उपलब्ध कराबैत आयल सेहो जनौलक। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दीवास से सुनि रहल मैथिली भाषा में समाचार पूरा भेल।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। त्रिशूली 3A जलविद्युत आयोजना की सुरंग से 2 लोगों को बचाया गया जीवित। सुरंगों में खोज और बचाव अभियान जारी। भोटेकोशी बाढ़ से प्रभावित तथा विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और अस्थायी आवास के लिए सरकार ने भूमि पहचान समिति की गठित। पृथ्वी राजमार्ग के कृष्णभीर में ट्रैक खोलने का काम शुरू। 10 दिनों के भीतर सड़क खोलने का है लक्ष्य। और अमेरिका जो बाइडेन के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा यूक्रेन को दी गई सहायता राशि यूरोपीय संघ के देशों से वापस मांगने की तैयारी में। अब समाचार विस्तार से। रसुआ की भोटेकोशी नदी में आई भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A जलविद्युत परियोजना की सुरंग के भीतर से आज सुबह 2 लोगों को जीवित बचाया गया है। बचाए गए दोनों व्यक्ति नेपाल विद्युत प्राधिकरण में कार्यरत संजय शाह और कबीर महर्जन हैं। सुरंग से दूसरी बार बचाए गए कबीर महर्जन की स्वास्थ्य स्थिति गंभीर दिखने के बाद उन्हें तत्काल काठमांडू लाकर छावनी स्थित वीरेंद्र सैनिक अस्पताल के गहन उपचार कक्ष यानी ICU में भर्ती कर इलाज जारी रखा गया है। वहीं सबसे पहले बचाए गए संजय शाह की स्वास्थ्य स्थिति सामान्य बताई गई है। इसी तरह सुरंग के भीतर से एक व्यक्ति का शव भी बाहर निकाला गया है। पुलिस के अनुसार शव की पहचान होना अभी बाकी है। सुरंग के भीतर फंसे अन्य लोगों की खोज एवं उद्धार कार्य जारी है। भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय ने रसुआ भोटेकोशी क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित और विस्थापित परिवारों के सुरक्षित पुनर्वास तथा अस्थायी आवास के लिए उपयुक्त जमीन की पहचान करने के लिए एक समिति का गठन किया है। नाफी विभाग के महानिदेशक प्रकाश जोशी की अध्यक्षता में गठित समिति में संबंधित मंत्रालयों विभागों स्थानीय तह प्रशासन पुलिस सशस्त्र प्रहरी और भूमि प्रशासन कार्यालयों के प्रतिनिधि शामिल हैं। मंत्रालय के अनुसार समिति बाढ़ से प्रभावित और जोखिम वाले परिवारों की पहचान करने के साथ ही पुनर्वास के लिए उपयुक्त जमीन का चयन करेगी। इसके लिए स्थलीय अध्ययन और प्रारंभिक आपदा जोखिम आकलन भी किया जाएगा। समिति स्थानीय तह के समन्वय में प्रभावित परिवारों का वास्तविक विवरण जुटाएगी और पुनर्वास के लिए आवश्यक जमीन की पहचान कर अपनी सिफारिश सहित रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपेगी। सरकार ने बताया है कि रसुआ की भोटेकोशी नदी में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद विभिन्न परियोजनाओं की सुरंगों में अभी भी लोगों के फंसे होने की आशंका के मद्देनजर खोज एवं बचाव अभियान जारी है। परराष्ट्र मंत्रालय ने आज भोटेकोशी बाढ़ से संबंधित नवीनतम जानकारी देते हुए बताया कि लांगटांग चिली में अपर त्रिशूली 1, अपर त्रिशूली 3A, अपर त्रिशूली 3B तथा अन्य परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे लोगों की खोज एवं बचाव कार्य प्रभावी रूप से जारी है। मंत्रालय के प्रवक्ता लोक बहादुर पौडेल क्षेत्री ने बताया कि भारत, चीन और कोरिया गणराज्य से आए सुरंग बचाव दल नेपाली सेना के साथ समन्वय कर लगातार काम कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार अब तक बचाए गए लोगों में 300 से अधिक विदेशी नागरिक शामिल हैं। वहीं अभी भी 35 देशों के करीब 600 विदेशी नागरिक लापता हैं। इसी तरह मृतकों के शवों के DNA नमूने लेने, उनका विश्लेषण करने और पहचान की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए भारत, चीन, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया की फॉरेंसिक टीमें नेपाल पुलिस और अन्य संबंधित निकायों के साथ मिलकर काम कर रही है। रसुआ की भोटेकोशी में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद अब तक 1,323 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। नेपाल पुलिस के अनुसार बरामद शवों में रसुआ से 140, नुवाकोट से 186, धादिंग से 65, चितवन से 359, गोरखा से 73, तनहू से 38, नवलपरासी पूर्व से 222 और नवलपरासी पश्चिम से 194 शव शामिल हैं। इसके अलावा भारत में मिले 18 शवों को नवलपरासी पश्चिम लाया गया है। बरामद शवों की पहचान के लिए DNA नमूने लेने सहित आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा रही है। अब तक 222 महिलाओं, 355 पुरुषों और 453 अज्ञात शवों सहित कुल 1,030 शवों को सुरक्षित रूप से दफनाया गया है। शवों की पहचान के लिए मृतकों के 1,260 और उनके परिजनों के 846 सहित कुल 2,106 DNA नमूने एकत्र किए गए हैं। इसी तरह पहचान नहीं हो सके 1,270 शवों का विवरण नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। नेपाल पुलिस के अनुसार बाढ़ से प्रभावित 13,000 से अधिक लोगों का अब तक उद्धार किया जा चुका है। वहीं बाढ़ के बाद लापता 4,898 लोगों की तलाश जारी है। चीन ने नेपाल के साथ आपातकालीन जल विज्ञान निगरानी संबंधी सूचनाओं का निरंतर आदान प्रदान करने की बात कही है। काठमांडू स्थित चीनी दूतावास ने बताया कि ये सहयोग बचाव तथा आपदा राहत प्रयासों के लिए किया जाएगा। इसमें नदियों में बने अवरोधों तथा हिमतालों से उत्पन्न जोखिमों से संबंधित सूचनाएं भी शामिल होंगी। चीन के मौसम संबंधी निकाय ने बताया है कि चीन और नेपाल के बीच केरुंग रसुआ सीमा नाके पर भीषण भूस्खलन होने के बाद से ही वो नेपाल को मौसम निगरानी, मौसम पूर्वानुमान, पूर्व चेतावनी तथा प्रभाव संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराता रहा है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: नेपाल टेलिकम को 4G

0: नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
1: अब बाकी समाचार। दार्चुला की अपी हिमाल गांवपालिका के भट्टार क्षेत्र में भूस्खलन होने के बाद बस्ती उच्च जोखिम में पड़ गई है। भूस्खलन के कारण सड़क और पैदल मार्ग को काफी नुकसान पहुंचा है, साथ ही चौलानी नदी का बहाव भी प्रभावित हुआ है। भूस्खलन के कारण जोखिम में पड़े भट्टार बस्ती के 10 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया गया है। ये जानकारी गांवपालिका अध्यक्ष भक्त सिंह ठेकरे पोहरा ने दी। अध्यक्ष ठेकरे के अनुसार भूस्खलन से पर्यटकीय पैदल मार्ग को भी काफी नुकसान पहुंचा है। भूस्खलन के कारण चौलानी नदी का बहाव प्रभावित होने से नदी तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। भूस्खलन का क्रम जारी रहने के कारण नदी के अवरुद्ध होने की संभावना भी बनी हुई है। सूचना तथा संचार मंत्री डॉ. विक्रम तिमिल सिन्हा ने भोटे कोशी बाढ़ से प्रभावित नागरिकों की पीड़ा और संवेदनशील परिस्थितियों को समाचार का विषय बनाते समय मानवीय गरिमा, गोपनीयता और सुरक्षा का पूर्ण सम्मान करने का संचार माध्यमों और पत्रकारों से आग्रह किया है। भोटे कोशी बाढ़ के बाद नुआकोट और रसुआ के होल्डिंग सेंटरों में प्रसूता महिलाएं, बच्चे, परिवार के सदस्यों, को खो चुके लोग तथा अन्य संवेदनशील परिस्थितियों में रह रहे नागरिक आश्रय ले रहे हैं। इसका उल्लेख करते हुए संचार मंत्री डॉ. तिमिल सिन्हा ने उनके व्यक्तिगत विवरण, तस्वीर और वीडियो सार्वजनिक करते समय विशेष संवेदनशीलता बरतने का आग्रह किया है। पोखरा के फेवाताल में आज सुबह एक कार गिरने से हुए हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य घायल हुए हैं। मृतकों में भारत के बिहार प्रदेश के पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल निवासी 26 वर्षीय नवदीप कुमार यादव तथा पहचान नहीं खुले एक अन्य भारतीय पुरुष शामिल हैं। ये जानकारी जिला पुलिस कार्यालय कास्की के पुलिस निरीक्षक दीपक प्रसाद रिजाल ने दी। पुलिस के अनुसार चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद पोखरा 18 स्थित गौरी चौतारा मोड़ से भारतीय नंबर प्लेट वाली कार फेवाताल में जा गिरी। हादसे में घायल उसी स्थान के 27 वर्षीय अनमोल कुमार यादव और 33 वर्षीय सूरज यादव का उद्धार कर इलाज के लिए गंडकी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पृथ्वी राजमार्ग अंतर्गत कृष्णभीर के ऊपर स्थित पहाड़ पर ट्रैक खोलने का काम आज से शुरू कर दिया गया है। नौबिस से मुगलिन सड़क परियोजना के पश्चिमी खंड के इंजीनियर सचेंद्र मिश्र ने बताया कि 2 दिनों तक पेड़, बांस काटने और झाड़ियां साफ करने के बाद आज से ट्रैक खोलने का काम शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि सड़क से करीब 9 मीटर ऊंचे पहाड़ को काटकर ट्रैक बनाया जा रहा है। ये ट्रैक 350 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा होगा। निर्माण कंपनी शर्मा जेबी की साइट प्रबंधक इंजीनियर ईश्वर नेपाल के अनुसार ट्रैक खोलने का काम 1 सप्ताह से 10 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। इसी भाद्र 14 गते को उक्त सड़क धंस जाने के बाद राजधानी काठमांडू से सड़क संपर्क बाधित हो गया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज देश भर भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना कर श्रद्धा और भक्तिपूर्वक मनाया जा रहा है। ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग के प्रणेता भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में भाद्र कृष्ण अष्टमी की मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए आज के दिन को श्री कृष्ण जन्माष्टमी और रात को मोहरात्रि कहा जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर ललितपुर के मंगल बाजार स्थित प्रसिद्ध कृष्ण मंदिर सहित देशभर के कृष्ण मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने ललितपुर के पाटन स्थित कृष्ण मंदिर में पूजा आराधना कर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए हैं। राष्ट्रपति पोडेल ने भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर राष्ट्र प्रमुख की हैसियत से प्रथम महिला सविता पोडेल के साथ पाटन दरबार स्थित कृष्ण मंदिर पहुंचकर पूजा आराधना की। इसी तरह कर्णाली और सुदूर पश्चिम प्रदेश के लोग उमा महेश्वर सहित दुबो की पूजा अर्चना कर आज अध्यारी गौरा एवं दुर्गाष्टमी पर्व मना रहे हैं। गौरा पर्व को सुदूर पश्चिम और कर्णाली प्रदेश के लोग अपने ऐतिहासिक एवं मौलिक पर्व के रूप में मनाते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में यूक्रेन को दी गई अमेरिकी सैन्य सहायता की रकम यूरोपीय देशों से वापस मांगने की बात कही है। ट्रंप के अनुसार अमेरिका ने यूक्रेन को बड़ी मात्रा में सैन्य सहायता दी, जिसका आर्थिक भार यूरोप को उठाना चाहिए। हालांकि यूरोपीय संघ से इस संबंध में अभी तक कोई औपचारिक अनुरोध नहीं किया गया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.9 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। त्रिशूली 3A जलविद्युत परियोजना की सुरंग से 2 लोगों को बचाया गया जीवित। सुरंगों में खोज एवं बचाव अभियान जारी। भोटेकोशी बाढ़ से प्रभावित तथा विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और अस्थायी आवास के लिए सरकार ने भूमि पहचान समिति की गठित। पृथ्वी राजमार्ग के कृष्णभीर में ट्रैक खोलने का काम हुआ शुरू। 10 दिनों के भीतर सड़क खोलने का है लक्ष्य। और अमेरिका जो बाइडेन के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा यूक्रेन को दी गई सहायता राशि यूरोपीय संघ के देशों से वापस मांगने की है तैयारी में। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।
2: सादा खाना 100 रुपियाँ, मटन खाना 200 रुपियाँ। ओए, मोबाइलको डाटा पनि हामीले चलाएको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नु पर्ने होइन र?
3: हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। डेली नै मजाले चलाउने
4: *14#15# डायल गर्नुहोस्।
0: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।

अग्निस्तपति भयात् तपति सूर्यः भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः। कठोपनिषद् दूसरो अध्याय को तेसरो